0: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड्स के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए @winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th May to 6th August। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउस होल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू tried Dawat Extra Long Basmati. 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
1: Okay, Laura, from the top.
2: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier, with personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
3: Oh, there's nothing like a lazy Sunday. A cheeky lie-in followed by Costa at home. The perfect morning ritual. See, some things are best enjoyed right at home, and coffee on your terms makes all the difference. Costa Everyday Instant Coffee. It's

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट AsianFuneralCare.com.
2: SonarTours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonarTours on 0208-951-0111.
3: This week with Little Plus, reserve your Ninja Slushy frozen drink maker for just £179. Secure yours through the app and collect it in store next week. So when the heat hits, you're already chilling. Lidl, more to value.
4: Subject to availability, selected stores, T's and C's apply. See lidl.co.uk/lptv. Offer ends 19th of July 26.
5: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020-8574-7777.
0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।